नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ये वीरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। तो दोस्तों, रूपरेखा को जानने से पहले आओ जानते हैं आज को दिन, तारीख व समय को। आज दिन है बुधवार को, तारीख है 24 जून 2026। ई वीरा अपने स्टूडियो की घड़ी में समय भाव है 7:01। तो दोस्तों, जो अपन ने दिन तारीख और समय को जानो है, आओ एक क्रम में जानत हैं प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुने अपन भोर कार्यक्रम में सुने भक्ति भरे गीतन को। एक बात सुने हैं पुनः प्रसारण कार्यक्रम शुभ कल हम होंगे कामयाब कार्यक्रम इस तरह कहानी मेरी भी खेत खलियान आस पास। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अपन 8 बजे से 10:30 बजे तक सुने, 10:30 बजे से 11 बजे तक सुने अपन आज की बात, 11 बजे से 12 बजे तक सुने बात तुम्हारी हुई, 12 बजे से 1 बजे तक सुने लोकरंग कार्यक्रम, 1 बजे से 3 बजे तक सुने सतरंगी कार्यक्रम और 3 बजे से 3:30 बजे तक सुने बुंदेली गीत। यही के बाद

बजे से सुने शुभ कल कार्यक्रम, 4 बजे तक, 4 बजे से सुने हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, 4:30 बजे तक, 4:30 बजे से सुने अपन अम्मा की चौकी से, 5 बजे तक, 5 बजे से सुने अपन खेत खलियान कार्यक्रम, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे से सुने अपने विधा मंडली कार्यक्रम, 6 बजे तक। सो दोस्तों, जी आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा थी। आओ एक क्रम में सुनते हैं अपन कार्यक्रम भोर को, भोर कार्यक्रम में सुनते हैं भक्ति भरे गीतन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में।

0: हमारी लाला जी ने क्या कह दिया तुम ये संगे चलो
1: ये संगे चलो
0: और
1: भाई की
0: नहीं हारे
1: तो कहे थे हारे के हमारे जन
0: हरी लाला जी ने कह रही थी मेरे बेटे की काम है
1: मुझे मेरे बेटे हम पढ़ रहे
0: पढ़े ना बात रहे पढ़े नहीं क्यों आते मेरे बेटे की काम मुझे हारे तुमसे मिल लेते
1: कैसे क्या बात है बता नहीं बता नहीं
0: कहा कह रहे लाला जी नहीं चल रहे अरे
1: क्या कह रहा भाजी तेरे से क्या बात है तुम बता रहे हारे जाने की क्या जरूरत
0: अरे लाला जी अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे समझ में नारी में दवाई नहीं आप लेकिन इनसे ना होती।

लालाजी ने तो जाए दादाजी ने दवाई दादा नहीं हो कि भाई तो हमें लालाजी

पैसे पाठी देते ही एक मुझे तो देती है दवाइयों को इस्तेमाल करते ये तो बड़े वहां से आए थी अरे ये लाला जी जयंती होते कायदे बड़े लेके हैं हम दवाई ले आती है

ہاؤ لالا جی

0: अभिनंदन पाल कहना से।
1: अभिनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, जैविक खेती से लाभ क्या है?
0: जैविक खेती से लाभ ये के

0: राइट बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, जैसे तो थोड़ी ना बढ़ेगी यार, कुछ अलग तरीके की खेती करे तभी तो आय बढ़ेगी।
1: नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
0: सुरेंद्र पाल, क्या नाम?
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी,

0: बर्बाद सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई किसी के पास नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है, मान लो हम या आप रह के भगवान के भरोसे रहते हैं, अगर अभी पानी खुल गया तो बल्कि तो कुछ नहीं है, अगर बच गया तो सब।
1: एक बहुत आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप खेती करते हैं।
0: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते।

0: आनंद आप ले सकते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा नारावान जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
0: हमारा नाम अजीश यादव, पिथौरा निवारी छात्रावास।
1: अच्छा वही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
0: उससे जो लाभ है वह सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो पता है टमाटर है आलू जी जैसे तैयार हो जाते हैं। अच्छा गोबर खाद चाहे, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब रहता है, इसमें

खेती से लाभ है भारी, की खेती से लाभ है भारी, अपने भूमि रे खुशहाली, अपने भूमि रे खुशहाली, सुमाला अरे माला माल कर देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती। फसल उपज को खूब बढ़ावे, फसल उपज को खूब बढ़ावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, सुलावई अरे लावई हाँ लावई लाभ हमें दे दी जा जीवन भर सुख दे।

I'm gonna get it,

हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में भरते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं

अगर होती है तो आपके आंगन में सेवाएमान बढ़ा देती, बच्चा आपके आंगन में सेवाएं देता और अपने भाई से राखी बांधा।

Bagi terapkan, ini terapkan, terapkan.

0: फिर अब काकांची के लोग महीने भी के लोग ये ये फिर बंदे दो तम चपटा के लोग चपटा का
1: ये साउंड है ये देखते हैं डबल डबल है
0: अरे क्यों ना तो सामने आप जीत भी जाती
1: है उसके बाद में बना जीत साउंड ये नहीं जाना तो ये भी तो
0: अच्छा जीत नहीं आता पहले तो बात ही नहीं
1: है अगर आप नहीं लगाए तो वो आप मेरे पास नहीं है
0: ऐसे बड़ा हम नहीं आते हैं बड़ा हम नहीं लगाते
1: हैं
0: तो बस जीत जाते हैं
1: बड़ा नहीं जाते हैं

0: अच्छा अम्मा जो बता के आपके समय में ना कौन कौन से तेरा बता
1: पकड़ू पहले तो गरीबी और सोचा पकड़ा सलाह के तेरह

I'm going to go to the hospital.

ഇപ്പൊ അതുപോലെ അമ്മ

Kemudian kita itu nanti dua.

माता ने हमारे देश में एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य को प्रतिष्ठित किया है जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश नाथ, जो विश्व के एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं।

ली, वहां सैकड़ों किसान आते हैं, उस मॉडल को देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। वहां जो मिलके और जब हम देखेंगे तो हमें विश्वास होगा कि नहीं ये भी संभव है और ऐसा हो सकता है एक हेक्टेयर से भी किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है। मेरा किसान भाई जी से अनुरोध है।

जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं हमारा, हमारे खेत में बेचना, हमारा सिंह बड़ा बेचना, जो हमारे खेत में लाभ को छेद करते हैं, मिट्टी को जल बनाते हैं, जब बरसात होती है।

सारी पीढ़ियां रहे या वहां रह रही है नहीं रह रही ना, सारे पेड़ मालिक बड़े हैं। आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर जो धन इकट्ठा कर रहे हो, इससे आपकी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी। ऐसा तुम्हारी ईमानदारी से आज जो मिलावट कर रहे हैं, उससे भी आग्रह करना चाहूंगा।

करना चालू कर दें तो भी आप दो वक्त पे लाएंगे। जब आप दूध बत्ती खरीदेंगे दूध बत्ती की मांग बढ़ेगी, जो हमारे दो भक्त गौ माताओं को पाल रहे हैं वो तो और ज्यादा गौ माताओं को पालेंगे। तो मेरा जहां भी

करते हो इतना भगवान मतवा जिसमें चले जाते हैं तो दुख का दुख होते आप

0: तो हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। एक दो दिनों को मिलने की बात है, बता दिन मेरे तैयार नहीं होता,
1: लेकिन आज मैंने लगे।

Ramadan, I don't believe.

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात करता, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष भैया, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत अच्छे हाल समाचार है सर। बस घर की तनाई बुनाई चल रही है इस समय, क्योंकि जब बारिश आने वाला है ना, खास करके जो जी सर, तो उसके लिए घर की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि कच्चे घर होते हैं ना सर, उसकी सफाई करनी चाहिए, और जो खपड़े वाले घर होते हैं उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, तो इसमें मजदूर लगा करके काम जारी था सर।
0: क्या बात है, वहाँ बारिश की क्या संभावनाएं हैं अभी आपके यहाँ?
1: मौसम की जो प्री मानसून आया था सर, इसमें तो बारिश हो चुकी है, और बहुत लोगों ने धान की जो खास करके फसलें हैं वो ले ली गई है। अब
0: अच्छा,
1: बारिश आए, अच्छी बारिश आएगी आषाढ़ में, तो फिर मतलब रोपाई का काम शुरू हो जाएगा सर।
0: अबे यहाँ बुंदेलखंड में तो एक बूंदी नहीं है अपने यहाँ।
1: हाँ सर, यहाँ पे बूंदे पड़ रही थी सर, अभी 2-4 दिन पहले पानी बरसा है, और मतलब प्री मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन 2-4 दिन का मतलब थोड़ा सा अभी रुकाव है मानसून में, लेकिन बारिश बहुत जल्द आएगी, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज की फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: मूवी का नाम है दिल का क्या कसूर।
0: दिल का क्या कसूर,
1: जी सर।
0: उसका गाना कौन सा सुनना है?
1: आशिक में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें मेरे दिल का क्या
0: क्या
1: कसूर, ऐसे करके सॉन्ग
0: कसूर,
1: है सर।
0: क्या बात है। दिल का क्या कसूर इस मूवी का गाना नाम है, और ये फिल्म आशिकी में हर आशिक, इस गीत को आपको सुनना है, आपको
1: हाँ जी
0: सुनवाते हैं
1: सर,
0: आपके पसंद का ये गीत। सर
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे जागरूक श्रोता हमारे साथ जुड़कर और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे करते हैं, हमें बहुत बढ़िया लगता है।
1: बिल्कुल सर, बुंदेलखंड वर्षा का यही प्रेम स्नेह बना रहे, और आप जैसे उद्घोषक जब कार्यक्रम का प्रेजेंट करते हैं तो पूरी तन्मयता से ऊर्जा का संचार करवाते हैं, और इस कार्यक्रम से न केवल माँ और दीदी लोग जुड़ाव रखते हैं, बल्कि हर वर्ग के लोग भी पसंद करते हैं इस
0: क्या
1: कार्यक्रम
0: बात
1: को।
0: है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपके पसंद का ये गीत सर।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: क्या हाल चाल है उस भैया?
1: ये अच्छे हैं।
0: बारिश मारिश हो रही कि नहीं आपके यहाँ छत्तीसगढ़?
1: नहीं भैया, बहुत ज्यादा धूप है अभी भी।
0: अच्छा, अभी भी धूप है
1: जी।
0: क्या बात है, बताइए कौन सा गीत सुनना है फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, फिल्म है साजन का घर।
0: ऋषि कपूर और जूही चावला, अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज में
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सर
1: शुक्रिया।

पैक में 9 to 5 हाया लिप ग्लॉस डे हाइलुरोनिक एसिड और SPF 15 के साथ हाई शाइन ग्लॉस लॉन्ग वेयर स्टेन 6 शेड्स बाय समर फ्लश लिप्स लैक्मे 9 to 5

0: क्या देवर जी,
1: ब्रश किए बिना ही जा रहे हो?
2: ब्रश ही तो कर रहा हूँ
1: मिट्टी वाले से। क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश ही नहीं किया देवर जी।
3: क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप अब दे सबसे ज्यादा ताजगी सिर्फ 20 रुपए में।
4: आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले ही हफ्ते में देश

0: सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: हाँ, खम्मा गड़ी हुकम।
0: खम्मा गड़ी क्या हाल चाल है सर?
1: हाँ, मोहनलाल प्रजात बोल रहा हूँ, जिला बालोतरा से।
0: जी मोहनलाल जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया, मेहरबानी है सर आपकी।
0: राजस्थान में पानी वानी गिर रहा कि नहीं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या किया, वो रुक गया है बारिश तो?
0: कहीं अटका हुआ है ये बारिश?
1: हाँ सही है।
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज फिल्म का नाम है आँखें।
0: हैं?
1: फिल्म का नाम है आँखें।
0: आँखें?
1: हाँ, मिलती जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी,
1: जी
0: क्या बात है। और राजस्थानी कुछ बातें बताइए।
1: हाँ, राजस्थानी में तो कभी घूमने आओ तो आपको बहुत ही दौरा धरती में घुमाएंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ जी,
0: और
1: देखने लायक है नाकोड़ा जी है, जो हमारा बालोद्रा जिला के पास है।
0: अच्छा।
1: और पसपदरा रिफाइनरी भी है हमारे पास ही है वो।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वहाँ पे आएंगे तो जरूर घूमेंगे।
1: बिल्कुल जरूर पधारना और हमें कॉल भी करते रहना।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान अगर आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपके पसंद का ये गीत सर।
1: धन्यवाद।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: नमस्कार, विजय जी बोल रहे हैं, उज्जैन पठा से, जिला झांसी से।
0: जी उज्जैन विजय भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है?
1: अब गर्मी भी आ जा, कल बारिश भी हो गई, हाल चाल तो बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी आस हो जाने का लग रही के पर गया तो परसों तो पानी
0: खत के जावार सूखा पड़ने
1: यही तो कह रहे हैं। अब तो ही ऐसी फुहार से आ रही, अब का हो गया। अब हमें लगा पर साल इतनो दो क्या पढ़ने बे नहीं पाऊंगा, तो हमें लगा बीज भी मूल सूल ले लें तो बीज धरे रहने। 12,500 के क्विंटल अपन ने मूंगफली ले ली, आती ही नहीं का।
0: सही बात है, सही बात है।
1: प्रकृति का है, प्रकृति से अपन ने दूहन करो तो वो परिणाम होगा।
0: सही बात है। अपन कह नहीं सका, जा बार वैज्ञानिक पहले कितने बताए थे कि जा साल बहुत अच्छी बारिश होगी,
1: लेकिन अब तो नहीं
0: जून निकल गई। बताओ जून निकल गई अपनी, जून में बारिश नहीं भाई। जा बार
1: कह रहे आस हो तो हमें लगा के अब तो समस्या बहुत खराब है। अब तो जो आपका सही पर्यावरण क्लाइमेट चेंज वो सबको बिल्कुल सब कछु है, जो कछु है हमारा जो रेट गुगुल नहीं रेट गुगुल पे जो बताओ तो क्या अभी चेत जाओ। लेकिन अब प्रकाश की दौर में अब तुम आप जान रहे कि जी रोड बन रहे कहू कछु चल रहे तो पीड़न की तो देखो आधाधुन कटाई हो रही है और मकान बन रहे हैं।
0: सही बात है बिल्कुल।
1: हाँ तो वहाँ विकास करें तो देखो कछु तो अपन का भुगतान करना ही पड़े।
0: ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ ठीक है, हमें आप ज्यादा टेम नहीं लेते, हम भी कम बचो।
0: कौन सा गीत सुनने आज?
1: और खिलौना मूवी को सुना दो, पुरानी है रफी साहब की आवाज में है, टाइटल सॉन्ग है खिलौना, जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।
0: ठीक है साहब, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद को जो गीत।
1: ठीक है, नमस्कार सब श्रोताओं को पहुंचे, बहुत चैनल में जुड़े चार पाँच महीना में हमें भी बड़ी तसल्ली नहीं, हमें ध्यान आ गया, हमने एकदम हमने की आज तो नीलखंड से मुखातिब हो जाए। ठीक है, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: Nein. Phil. And go. Go iconic.
1: माँ, दुगनी ताकत का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है मुझे कोई गिरा नहीं पाएगा?
2: गिरा पाएगा, पर तोड़ नहीं पाएगा।
1: क्या आप सारे प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगे?
2: इजी तो कुछ भी नहीं होगा, पर हर सवाल का जवाब दुगनी ताकत देगी। इसीलिए तुम्हें रोज देती हूँ बोनवीटा, जो दूध में विटामिन डी, आयरन और जिंक को दोगुना करे और दूध की शक्ति बढ़ाए।

0: Would you like to have more?
1: Oreo. Oreo Golden, the new twist to vanilla.
2: Mama, Galaxy S26 Ultra. पर आप मैनेज कर लोगे
3: मैम? अब गैलेक्सी फॉरएवर के साथ गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मिल रहा है सिर्फ 50% पे, वो भी 12 मंथ्स नो कॉस्ट ईएमआई के साथ। अब सैमसंग फाइनेंस प्लस पावर्ड बाय डीएमआई फाइनेंस के साथ एलिजिबिलिटी चेक और अप्रूवल दोनों आसानी से हो जाते हैं।
4: ओन गैलेक्सी S26 सीरीज एट 50%। जॉइन गैलेक्सी फॉरएवर नाउ।

0: मेरी जान का दुश्मन हाय हाय
1: हाय
0: कैया बल्ली प्यार का दुश्मन
1: हाय हाय
0: मेरी जान का दुश्मन हाय।

प्यारा मैं कर

0: इसकी चाल तो देखो।
1: अरे रंगे चलाया।
0: इसके बाल तो देखो।
1: अरे झूठे मूठे।

0: चेहरा किसी का खिलता है। हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: ना ना जी ना जी ना जी,
0: डर गया वो कैसे।

0: बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद हैं आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुन ही रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर

0: लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम। हाँ
0: जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
1: तो हम चल चलते वहाँ पर हम पहुँचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहाँ पर शोध होता है, जहाँ पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा हैं और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब जो है सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने को मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है जो किचन से पानी निकलता है जी। और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उसे उगा सकते हैं जी। और दूसरा इसके साथ ही साथ जो है हम, क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कि हमने एक पोसा ड्रम हेड एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है जी। तो उस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें खाद में को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा
0: जी।
1: तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है और लहसुन है, इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
0: जी।
1: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो हम इसको बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पे टुकड़ों में जब खेत को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं
0: जी।
1: और मैं तो यही सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती

0: हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए। मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जो है जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के, और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध हैं यहाँ पे
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी, हम जो भी जानकारी दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं, हम उपलब्ध रहेंगे।
1: हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में भी देखता हूँ, क्योंकि मतलब ये मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और जो है मिर्च है, पालक है, और आपका धनिया है, हरा धनिया, और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो है मतलब जो जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है, और समय कम लगने की वजह से हमें, भाई देखो हमारा किसान जो है इतना अभी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसने धान लगाया और 6 महीने बाद आया, धान अलग यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिसेस जो नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई, और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां, और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसे कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं, और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब ये व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के जो है लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पे, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केटों में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंस मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली, हम मैं देखता हूँ कि चना भी बहुत जाता है
1: जी जी
0: दिल्ली
1: जी,
0: हरा चना
1: जी,
0: तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए
1: जी,
0: चने साग बनता है
1: बिल्कुल सर,
0: तो आप ये यहाँ से चना उगा के यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है
1: जी। यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है।
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं, उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड मतलब भूमि की तैयारी करने के समय ही हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद, और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड

0: लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया। हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहाँ से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो, जो भी इरिगेशन सिस्टम हो, उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है सब्जियों में, उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है, तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में हैं, यहाँ पानी इस बार बहुत गिरा है, लेकिन पहली बार 4 सालों में 5 सालों में बहुत कम पानी था।
1: जी जी।
0: तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
1: जी।
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली हो, जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है, जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं, लेकिन जो साखी है जो पालक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो, तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर, हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है पूरा एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जितना हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे, किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को, खेती को जो हम अब एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आई, इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये हमारे कृषि का ये भविष्य है, और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाइए ही, साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम जो है सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।

0: आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यवसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खादों की सब्जियां जो हम खाते हैं तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि

0: की बात कर लें या सब्जियों की बात कर लें, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए, इसके लिए भी कई तरह के केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सकें आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
1: चलिए अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
0: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं, इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
0: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
1: 92 19 20 77 49।
0: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में, इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
1: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आज। चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटेड जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
1: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
0: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रुपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी। और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी। और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं? वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज़्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है, ताकि बाद और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके। साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश की खेती

0: वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश की किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहां पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी वाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आप ने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है
0: 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाति भैया हरो नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा लेके आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। जी हाँ साथी हरो, अम्मा के चौकी कार्यक्रम में आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपनी सेहत से जुड़ी भई बातचीत कर रहे थेंगे और ऐसी रेसिपियन को जाना थेंगे जो अपने लाने आसान हो और जिनको अपन आसानी से खा पावे, है कि नहीं। तो देखो भैया, और आप सबको बता देवे कि मौसम में बदलाव को असर हमारे खान पान पे सबसे ज्यादा परिवर्तन लेके आउत है को। और अगर ई मौसम की बात कर लेवे तो ई मौसम में फल हमें पोषण तत्व दे थेंगे, जैसे कि हर मौसम को एक फल होते ही। सो ऐसे ही ई मौसम के भी कछु फल हैंगे जो खावे से अपन को पोषण तत्व भरपूर मात्रा में मिल सकत है, जो अपने शरीर के लाने बहुत ही ज्यादा आवश्यक होतेंगे। ई मौसम में तापमान और गर्मी की असर को कम कर भी किलाने फलन के राजा आम के संगे संगे तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार, बेल और ऐसे कई तरह के फल हैंगे जिनको खावे से पर्याप्त मात्रा में जो है अपन को प्रोटीन और पोषण मिलत है गो। और भैया हरो देखो, आप सबको बता देवे कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही, राम धई घाम देखी से तो बुखार से चढ़त जा लगत के बाए देखो कोनो काम ना मिलवे, बस कूलर पंखा में बैठ के अंदर ही अंदर को काम कर लेवे। लेकिन कहा है कि काम काज कर भी के लाने बाहर तो निकल नहीं आते हैं। सो अपनी अपनी देखभाल अपन और अनखो कर बहुत जरूरी है गो। और जब भी घर से बाहर निकलवे तो देखो, हम बीर बीर आप सब जनन से कहूँगे कि मुड़ी खो ढाँक के रखवे, चाहे स्टॉल से ढाँक लेवे, चाहे भैया हरो दुपट्टा से। अब दुपट्टा को मतलब जो नहीं है कि पत्रो सो दुपट्टा ले लो, अच्छो मोटो सो हुए दुबला उतर करके डाल लो खो, ऐसे दुपट्टा डालने अपन को, ठीक है। और अगर देखो आंखन पे चश्मा लगा लो तो भी आप घाम से भी बच सकते हैंगे। तो भैया हरो आप सबसे क्या वो चाहते हैं कि घामो बहुत तेज पड़ रहा है गो, ध्यान रखो अपनो तना को और बाली बच्चन को रखो। बाली बच्चन को कहा है कि अब देखो भी तो नहीं जाना थेंगे कि हमारे लाने का सही है का गलत है गो, सुबह जिद करने लगा थेंगे बाहर खेल भी की। अब ऐसी घाम में बिल्कुल आप उनको अनुमति ना दो कि भी बाहर जाके खेल बे, आप तो बस उन्हें सुबीरे शाम जो ठंडो ठंडो मौसम होती उमें खेल भी के लाने को। और घाम में तो बिल्कुल ही ना करन दो, आप बाहर अंदर ही बैठा रहो, अंदर ही बैठ के उनके संगे पढ़ाई करवाओ, उन्हें खावे पीवे में बिदाएं रहो, जैसे जो पोषण वाली चीज़ें होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें भी उन्हें खवाओ। जी नहीं खवाने आपको के नमकीन खुआ दो और समोसा खुआ दे, जलेबी भजिया ऐसी चीज़ें नहीं खुआने हैं, जो उनके लाने ज़रूरी है वे चीज़ें खवाओ जिनसे उनको पोषण मिलवे, जिनसे उनको शरीर ताकतवर बनवे है और ही लपट से बचा रहे। अब देखो अमिया को पनो खू वहीं चल लो ट्रेंड में है वो, करनी लगत के नई रिलाई ट्रेंड में चल रही, सो ऐसी ट्रेंड में अब अमिया को पनो चल लो बढ़िया। सो अमिया को पनो भूंज के बढ़िया अमियाओं को पनो बना के खुआओ है, प्याज डाय दू मैं खू वहीं बिला ताकि उनको लपट ना लगवे। इन सब चीज़न को अपन को ध्यान रखने हैं, काहे कि अपने ही कोई जिम्मेदारी होती कि अपन इनको ध्यान रखवे, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी में साथी भैया हरो हम आपको बताएंगे कि सेहत को साथी है गो ई मौसम की फल। और फलन की अगर बात करें तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको

0: अपन कर ही रहेंगे संगे संगे ही में अपन करें तरबूज खरबूज लीची स्ट्रॉबेरी आलू बुखार और बेल की भी बात करें। ठीक है, अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमें फलन को अपने आहार को एक हिस्सा बना लें चाची। ठीक है, इनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हैगी अपनी भी मजबूत होतेगी और संगई में स्वास्थ्य की जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होतेगी उनसे भी जो बचाव थे अपन और अनखो। ठीक है भैया रो, सो का करने अपन को कि गर्मी के फल जो हैंगे भी बीटा कैरोटीन कैरोटेनॉयड और खनिज तत्वन से भरपूर होते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल फ्री रेडिकल्स को कम करके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव देंगे। केवी को मतलब है को कि गर्मियन में इन फलन को सेवन करने से अपन और स्वस्थ रहेंगे और आजकल होवे वाली जो बीमारी है उनसे भी अपन बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फल कौन कौन से हैं और उनके पोषण तत्व का कहेंगे भी हम आपको आगे कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। इतने साथ ही यारो अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से लोकगीत को। साथ ही में आज के कार्यक्रम में अपन जो भी जाने के योग कर वो भी अपने लाने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते वो। ठीक है, तो बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौके से। आओ अपन और सुनते हैं एक बढ़िया से लोकगीत को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ। पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको बता देंगे कि हम हैंगे आपके संग, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ साथियों, अम्मा के चौके में अपन और जान रहे हैंगे कि सेहत के साथी हैंगे ई मौसम के फल। तो प्राकृतिक मौसम में बदलाव के संगे संगे जो आत है भी अलग अलग किस्म के फल भी आते हैंगे और जिनको स्वाद भी ई मौका के लाने बहुत अच्छे होते हैं। स्वाद के संगे संगे पौष्टिकता से भरपूर होते हैंगे जे फल। आपको हमेशा सेहतमंद और मौसमी बीमारियों से भी जे बचाऊ थेंगे, इनकी बड़ी भूमिका ही में रहेगी। तो साथियों अवैध जैसे देख रहे हैंगे कि तरबूज खूब ही खूब बिक रहा होगा बाजारन में और अपने सब साथी चाव से खाऊत भी हैंगे इको। तो इनके पोषण तत्वन के बारे में अपन कछु बातचीत कर ले में अपने साथियों से। इनमें पोषण तत्व के संगे 92% पानी होते वो। तरबूज में मौजूदा विटामिन ए सी और बी भी होते वो। और इके अलावा आप सबको बता देवे कि एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन जो कि हृदय और हड्डियन को सेहतमंद बनाते वो।

गई मैं साथियों, मधुमेह रोगी भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं, यानी कि जो मधुमेह के शिकार हमारे साथी हैंगे वे ईखों खावें तो लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। तरबूज को सेवन कर सकते हैंगे वे, और मतलब कभी कभी ऐसा होते ही ना उन्हें लगत क्या रही जो मीठो है को और हम नुकसान ना कर जावे हमें, हम खें के नहीं खें, तो वे खा तो सकते ही लेकिन सीमित मात्रा में खावे। और अगर देखो आपकी मधुमेह ज्यादा ही खराब है तो फिर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी नहीं खाइयो। लेकिन जिन साथियों को ऐसी कोनो समस्या नहीं है वे भरपूर मात्रा में इसको खा सकते हैं लेकिन लिमिट में। ओके, लाने भी सीमित चीजें होती हैं भैया, हर आती कोनो भी चीज की अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब अगलो नंबर आते है गो आम को, जो कि फलन को राजा जी को कही जाऊ थेगी कत के नहीं कदई। इमें सबसे ज्यादा पाए जावे वाले जो है वे विटामिन ए और सी, फोलेट व फाइबर सेहत के लाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आम जो है वो हाई ग्लाइसेमिक फलन की श्रेणी में आउट है, ऐसे इको सेवन जो है सीमित मात्रा में करने चाहिए। हालांकि इको भरपूर स्वाद लेवे के लाने अबे थोड़ो से इंतजार आप सबको करने आए, काहे कि अबे बाजार में जो है आम आ तो रहो लेकिन जब दशहरी आन लगते ही ना वो बड़ो अच्छो आम लगा थे वो दशहरी को, और सब जने एकदम ललचिया उठेंगे कि अरे भैया दशहरी आ गई अब तो खा लो, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, तो बड़ी अच्छी बात है खाएं जज्जी। लेकिन हर चीज को एक सीमित मात्रा में खाएं चाहिए, तो अपने शरीर को भी फायदा दे और अपन को भी फायदा दे। कोनो भी चीज की अति जो है वह अच्छी नहीं होतेगी। अब अगर साथियों उतना ही हम बात कर लेवे खरबूजा की, तो खरबूजा जो है वो गर्मियन की तपिस कम करवे के लाने, यानी जो गर्मी अब बहुत भयंकर चल रही है, अरे भैया गर्मी की बात करें तो हमें अकबकी सी छूटन लगा, तो गर्मी की तपिस कम करवे में खरबूजा जो है बेजोड़ है वो। इमें कहा होते कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो भरपूर होते हैं वो, और ई फल में फाइबर के संगे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाओ जाऊ थे वो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जो मधुमेह रोगियन के लाने भी लाभकारी होते को, लेकिन मधुमेह रोगी जो है इको सेवन सीमित मात्रा में ही करवे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप सबको। लेकिन खावी में भी बड़ो स्वादिष्ट होते हैं क्यों साथी, तो अपने पता का कर रहेंगे कि इके अंदर यानी खरबूजा के अंदर जो बीजा रहेंगे उन बीजा को जो है सुखा लेतेंगे धूप में, पहले डार देतेंगे, धूप तो वैसे ही इतनी तेज पड़ रही हैगी कि अच्छे अच्छे आदमी भी सूख रहे हैंगे, तो ये तो बीजा ही हैंगे। इनको सुखाबे के बाद भी क्या कर रहते हैंगे कि इनकी कछु तो भी ऐसी चीज बनाऊ थेंगे जो उन्हें अच्छी लगती, या फिर इन बीजन के अंदर जो एक चीज निकलत है खावे वाली वह बड़ी स्वादिष्ट लगा थेगी। सो ऐसा भी काफी सारे साथी कर रहे थेंगे, और संगे में जो फल लगावो चाहते हैं कि पेड़ लगावो चाहते हैं तो बेबी इन्हें बचा के रखा तो और क्यारियन में ऐसे ही डाल देते। अब भी होत नहीं है तो बात अलग हैगी, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे थेंगे। अब हम बात करें बैरीज की, तो बैरीज के बारे में आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार की बैरीज होती हैंगी, जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि। इन सब में जो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होतेगी। इनमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाऊ थे वो, यही से इनको नियमित रूप से जो है अपन को सेवन करें चाहिए। संगई में देखो साथी हर वो बाजार में जो है आलू बुखार भी देखवे में आउट है गो, और आलू बुखार की अगर बात करें तो कछु दिनन बाद बाजार में जो आसानी से मिल भी वालो है गो। आलू बुखार जो है वो फाइबर विटामिन सी और ए को एक अच्छो स्रोत है गो। जो फल जो है गो वो ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित रखत है गो। इको सेवन सेहत के लाने बहुत ही अच्छो मानो जाऊ थे गो साथी हरो। तो जो भी हमारे स्रोता कछु स्रोता साथी इनको तो जो बहुत फेवरेट भी रहते है गो, रत के नहीं रहते सुबह इखों खा सकते हैंगे, और कछु तरन बाद जो है आलू बुखार आपको बाजार में खूब भरपूर मात्रा में मिले गो। अब ऐसे ही मैं आपको बता देगी कि बेल बेल जो होतेगी ये फल में प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर इतने सब पाए जाऊ थेगे। नियमित अंतराल में बेल को सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाते है गो, और शरीर को अंदर से ठंडक भी प्रदान करते है। साथी रुक क्यों अपने साथी हैं जो बुजुर्ग लोग होते वे अबे भी हैंगे वे क्या करत के बेल को शरबत बना के पियते। अब बेल को शरबत कैसे बनाते जो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ बेल को शरबत जरूर बनाते वे, और उसमें शक्कर डाल के पिया था जो भी कथा थे कि बहुत फायदेमंद होते वो, और खास तौर से ऐसे घाम से बचाऊ थे, ऐसे गर्मी के मौसम में बचाऊ थे, ठीक है। अब अगर बात कर ले मैं जामुन की, अबे साथियों ई फल को स्वाद और लाभ लेवे के लाने कछु समय तक आप सबको इंतजार करने हुज्जे।
करने पर है गो भैया रोकाई के जो आओ नहीं है इमे पाव जावे वालो जो जाम्बुलिन नामक को तत्व होते है गो वो ब्लड में ग्लूकोज को कम करवे में बहुत ही मदद करा थे। यही से हर कोनों को इको सेवन करें जज्जे मधुमेह रोगियन के लाने तो जो औषधि की तरह काम कर रहे थे वो तो बेबी इको खा सका थे। अब साथियों कछु और बात हम आपको बता देवे कि मधुमेह रोगी जो है वे समझदारी के संगे हर फल को ले सकते हैं खा सकते हैं। जैसे अगर स्वाद की बात करें तो आम धारणा हैगी कि मधुमेह रोगियन को फल नहीं खाने दे जज्जी, लेकिन मधुमेह रोगी जो है वे सब फल को सेवन कर सकते हैंगे। जो सही बात हैगी हर एक फल में अलग प्राकृतिक मिठास होतेगी, यही से शुगर लेवल जो है वो गड़बड़ा सकते है वो। इको आसान तरीका जो है वो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को ध्यान में रखबे ई पैमाने से और जो स्पष्ट हो जाऊ थे गो के कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोनो भी खाद्य पदार्थ खावे के बाद कौन सी गति से जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकत हैंगे। जो मानक 0 से लेके 100 तक है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 से 70, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्लड में ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाऊ थेंगे और शुगर लेवल के आकस्मिक उतार चढ़ाव को कारण भी बना थेंगे। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 69 से 56 होते, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मध्यम गति से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाऊ थेंगे। तो साथी यारो कैबी को मतलब जो है गो के अगर अपने शुगर वाले साथी भैया हैंगे और बेफलन को सेवन करवो चाह रहे हैंगे तो देखो वैसे तो सब फल जो हैंगे भी सही हैंगे, लेकिन हम आपसे जो कहवो चाहूंगे कि एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेवे कि हम ऐसे फल खा सकत या नहीं खा सकत। देखो अपन तो डॉक्टर है नहीं यहाँ और ना अपन अपने मन से कोनो भी दवाई ले सकत, ना अपन कोनो भी अपने मन से फल खा सकत हैंगे, काहे कि अपनो इलाज जो है भी डॉक्टर कर रहे हैंगे। तो डॉक्टरन को काहेगो के भी सही तरीका से आपको बता सकत हैंगे कि आपकी सेहत के लाने आपको शुगर की समस्या हैगी तो उके लाने कौन से फल आपको ज्यादा जरूरी हैंगे जो आपको खाए जज्जी। ठीक है तो जातो हो गई साथी हरो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल। आगे हम आपको बता देवे कि योग भी अपने लाने जरूरी है, वजन को नियंत्रण रखवो भी अपने लाने जरूरी होते है वो। जैसे कि अगर बात करें कि अनियमित जीवन शैली और खान पान की गलत आदतन के चलत वह वयस्क ही नहीं बल्कि किशोर भी मोटापे को शिकार हो रहे हैंगे। साथी रो योग के ई आसन को नियमित अभ्यास करके आप घटा सकते हैंगे वजन और शरीर की अतिरिक्त चर्बी और वजन को कम कर सकते हैंगे, उनको नियंत्रण में रख सकते हैंगे। तो आसन को जो नाम है वो धनुरासन है वो। इखो करबे से पूरो शरीर सक्रिय होते गो, ऐसे वजन घटबे के संगे अन्य शारीरिक जो समस्याएं होती हैंगी उनको भी जो दूर करत है गो। धनुरासन से स्थूलता दूर होतेगी और शरीर को सही आकार मिलत है गो। इखो करबे के लाने साथी हरो आपको उपाय करने हैं, काहे कि बहुत सारे श्रोतान को हमारे जो नहीं पदों के धनुरासन किसे कहेंगे तो हम आपको बता देवे आप यह प्रक्रिया कर सकते हैंगे। साथियों इको करवे के लाने पेट के बल आप लेट जावे और आपके जो पाँव हैंगे उनको कछु दूरी पे और दो हाथन को सीधो रख लेवे। आप घुटनन को मोड़ के कमर के पास ले जावे और अपने तलवन को दो हाथन से पकड़ लेवे। इके बाद सांस लेत भय छाती को जमीन से ऊपर उठावे और पाँव को आगे की तरफ खींचवे। अब शरीर को संतुलित रखत भय सामने की ओर देखवे। लगभग आपको जो 15 से 20 सेकंड बाद सांस छोड़त भय पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आने है गो। और आपको बता देवे कि जो आसन तनक कठिन है गो, लेकिन आप धीरे धीरे इको नियमित रूप से अगर अभ्यास करो तो आप अच्छी तरह से इको कर सकते हैंगे। और अच्छी बात तो जा हुज्जे के कोई ऐसी व्यक्ति के सामने आप करवे जिखो इन सब आसन के बारे में जानकारी हुवे जो को जानत हो, या फिर आप आसान सो तरीका जो भी अपना सकते हैंगे कि कई सारे वीडियो भी आसन के डरे रहेंगे योग के डरे रहेंगे तो आप बेबी देख के ये आसन को आसानी से कर सकते हैंगे। इको करवे से कमर और पेट के ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की चर्बी जो है आपकी घटन लगा थेगी घटवो शुरू हो जाएगी। तो साथी भैया यारो आज के कार्यक्रम में बस इतने कही काहे कि अपन ने जान लो है वो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल और अपने वजन को संतुलित यानी के नियंत्रित रखवे के लाने यू

भी अपने लाने जरूरी है। जी सब बातें अपन ने जानी हेंगी। अब अपना समय भी हो रहा है आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से जाबे को, तो जो कार्यक्रम आपको कैसा लगो हमें जरूर बतावे फोन के माध्यम से। आप चिट्ठी पत्री भी हमें लिख सकते हेंगे, तो उके लाने अपनो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। आप साथी हरो आपको बता देवे कि देखो घाम बहुत तेज पड़ रहा है भैया हरो, ध्यान रखो अपने घर के बुजुर्गन को रखो, अपने घर के जो बाली बच्चा हैंगे उनको भी ध्यान रखने है को। ऐसे में पानी आप सबसे ज्यादा पियत रहे, पानी में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करवे। एकाएक से जब आप धूप से आउट हेंगे तो कूलर की हवा में या एसी की हवा में बिल्कुल ना जावे। जब काकेती तनक देर बाहर बैठ लेवे नॉर्मल सी हवा में, उसके बाद ही आप कूलर या काकेते एसी में जावे। और जो ही नियम आपको जब करने हैं को जब आप एसी या कूलर से बाहर निकलत हेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एसी में मान लो बैठे हेंगे बिलात देर से और आपको बाहर जाना है कछु काम से, तो आप का करो कि तनक देर पहले नॉर्मल जैसी जगह पे बैठ जावे जिते कूलर पंखा ना चल रहा हो, तो उतर बैठ जावे, उनके बाद आप बाहर निकलवे। बाहर निकलवे के बाद आपको का करने हैं कि आपको सर को हमेशा ढक के रखने है गो, आंखन पे चश्मा लगाने है गो, और हो सके तो हाथन में ग्लेप्स भी पहन लेवे। अगर हमारा भैया गाड़ी से कितों जा रहा है मोटरसाइकिल से, तो हर भैया आपको जो है तौलिया या गमछा को इस्तेमाल तो करना ही है गो, ढाक भी के लाने मुड़ी, संगई में हेलमेट भी आपको लगा के जाने है गो, ठीक है। आज के कार्यक्रम में बस इतनी गई, फिर मुलाकात हो जाए आपसे अगले कार्यक्रम में। आप अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, हमारी और आपकी अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात हुई एक नए विषय के संगे, तब तक के लाने नमस्कार।

0: कान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई भी बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे थेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में। और हम हैंगे आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। साथियों आप तो जानते ही हैंगे कि खेत खलिहान कार्यक्रम हमारे किसान साथियों के लाने बहुत ही उम्दा कार्यक्रम मानो जाऊ थे को कहे कि इमें अपन और जो बातचीत कर रहे थे वो अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातचीत होतेगी। चाहे फसल को कैसे लगाने हैं उनकी बात करवे, फसल में कौन सी कीट व्याधियन को भगावे के लाने का तरीका अपनाना चाहिए वो बताथेंगे, बुआई के तरीका का होतेंगे, तमाम तरह की किसानी से जुड़ी भई जो भी चर्चाएं होती भी अपन और एक खेत कल्याण कार्यक्रम में समय समय पर करत रहेंगे। तो ऐसे ही अपनों खेत कल्याण कार्यक्रम सुन के अपने एक साथी हैंगी नंदिनी अहरवार जी जो कि सकरार से हैंगी, जौन सकरार आपने नाम सुनो ही हुई है। तो जौन सकरार से नंदिनी जी ने कार्यक्रम को सुन के अपनों सवाल भी हमसे पूछने की कोशिश करी हैगी और उनको कैबो हैगो कि आपके कार्यक्रम में जो एक्सपर्ट आउट हैंगे उन्हीं से हमें जा बात जानने हैगी। तो आज हम अपने ये कार्यक्रम में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सोलंकी सर जी को फोन पे जुड़ रहे हैंगे और नंदिनी जी को जो सवाल है वो कि उनकी कटहल जो पुरानी कटहल को पेड़ लगो है तो उसमें पीली पड़ रही बार सूख रही हैगी और ये बार फल नहीं लग रहे। नंदिनी जी के अनुसार उमें फल हमेशा लगाते और बहुत बढ़िया फल लगाते, तो ऐसी अचानक से जो दिक्कत उन्हें आ गई हैगी उनके कटहल के पेड़ में बा परेशानी को समाधान भी ई कार्यक्रम से जान बचाती हैंगी। तो हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर सर को बहुत बहुत स्वागत कर रहे थेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं सर?
1: इस बुंदेलखंड रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हूँ और पिछले करीब 15-16 वर्ष से हम बुंदेलखंड रेडियो से जुड़े हुए हैं। किसानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करते रहे हैं और मैं नंदिनी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने बुंदेलखंड रेडियो के माध्यम से अपने खेती किसानी में उगाए जाने वाले फल पौधों के विषय में चर्चा करने का प्रयास किया और उसमें जो समस्याएं उसके विषय में भी बताया और कहा गया कि कटहल जो काफी लंबे अरसे से फल दे रहा है उनका
0: जी।
1: लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस वर्ष उसने फल नहीं दिए, पीला भी पड़ रहा है और कमजोर भी है
0: जी।
1: तो मेरा नंदिनी को और नंदिनी के सहित हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो फल पौधों के उगाने में अपने अभिरुचि रखते हैं उनको मेरा आग्रह है कि जो भी फल वाले पौधे हैं निश्चित रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता हर फसल को, हर पौधे को, हर जीव को होती है। इसमें लंबे समय से हम अगर उनको पोषक तत्वों का आपूर्ति नहीं करेंगे तो वो फल वृक्ष भी कमजोर हो जाता है और साथ साथ उसमें फलों का आगम भी कम होता है और फल फूल आ भी जाते हैं तो ड्रॉप कर जाते हैं

0: इसमें हमारी निरंतर हो जा रही कमियों को देखते हुए जो पोषक तत्व हैं या जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी निरंतर कमी हो रही है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके लिए मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जितनी परिधि में उनकी छांव होती है, फल पौधे की जितनी परिधि में छांव होती है,
1: जी
0: यानी उस तने से लगभग 8-10 फीट दूर जो उसका तना है, उसके 8-10 फीट दूर में 1-1.5 फीट गहरी गड्ढा खोदो, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक चैनल
1: फूल
0: बना दो,
1: गोभी
0: नाली बना दीजिए चारों तरफ,
1: जी
0: ठीक है? और बिल्कुल जड़ में नहीं बनाना है,
1: जी
0: जड़ से 10 फीट दूरी पर एक घेरा बना दीजिए और उसका 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा उसमें गड्ढा खोद दीजिएगा,
1: जी
0: और उसमें जिंक सल्फेट और बोरोन, ये बाजार में बोरेक्स के रूप में मिलता है और जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है,
1: जी
0: और उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और उसी में DAP और यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश और महुआ की और नीम की खली, ये पूरा मिक्सचर बना दीजिएगा। तो मिक्सचर बना करके उस गोबर की खाद में मिला करके उसमें डाल दें, उसकी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हटा करके दूसरी मिट्टी फिलअप कर दें, उस मिट्टी में ये पूरा मटेरियल मिला करके उसको दे दें, दबा दें उस नाली में और उससे ऊपर पानी लगा दें।
1: जी
0: ये हमको करना चाहिए था फरवरी से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप कर देंगी या हमारे किसान भाई जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं जो लंबी अवधि तक फल देते हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाना प्राय देखा गया है, उनको यह प्रैक्टिस करना आवश्यक है। और उसी में निरंतर फिर पानी भरते हैं उस नाली में, मिट्टी का जो है जो मैंने पोषक तत्व तो बताए वो
1: जी
0: प्लस भराई करके पानी भर दें, तो वो फल देने लगेगा, उसमें फलों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल। तो सर इको उन्हें रिजल्ट जी की हम बात कर रहे थे कि उनको रिजल्ट देख भी के लाना उन्हें कब तक मिल पे है गो, काहे कि अपन और जो सोचते ही ना कि जैसे ही हमने काम करो तुरंत ही को रिजल्ट हमें देख भी मिल जावे, तो कितने दिना तक उन्हें इंतजार करने पड़े तब जाके वो पेड़ अपनी पहले जैसी अवस्था में आ पे।
0: देखिए वो जब उसमें ये काम करेंगी तो मैं समझता हूँ 1 वीक में, 1.5 से 1 से 2 वीक में उसमें हरियाली आ जाएगी, है ना, पीला
1: जी
0: बहुत दूर होने लगेगा,
1: जी सर
0: और भी जल्दी करना है तो उसमें जो लिक्विड DAP आ रही है मार्केट में और जिंक और बोरोन का सॉल्यूशन 0.2% का, या जब भी वो दवा लेने जाए, तो किसान भाई जब हमारे दवा लेने जाते हैं किसी दवा विक्रेता के यहाँ से, तो
1: जी
0: वहां से वो एक डोज की नियत मात्रा बताते हैं, हर डोज की मात्रा का गणना वो दवा के अनुसार की जाती है,
1: जी
0: इसलिए मेरा यहाँ बताना मुश्किल है कि वो
1: जी
0: कितने परसेंट की दवा है।
1: बिल्कुल।
0: तो जितने परसेंट की दवा होगी उसका उतने परसेंट का सॉल्यूशन बना करके हम किसान भाइयों को ये आगाह करते हैं कि उसका फॉलियर स्प्रे कर दें तो उसका जल्दी परिणाम आएगा।
1: बिल्कुल जी सर
0: हाँ, तो वो जो भी उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, अगर स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे करें, और स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो तने के आसपास चैनल नाली खोद दें और उसमें ये थोड़ा भरवा दें, भराई करवा दें, तो
1: बिल्कुल सर। तो
0: ये
1: जा तो
0: समस्या
1: बात हो
0: दूर
1: गई
0: हो।
1: सर अपनी कटहल की, कि कटहल को अपन कैसे जीवित रखने हैं गो। दूसरी बात करें सर, अपन देख रहे हैं कछु दिनों से बहुत ज़्यादा अपने बुंदेलखंड में अक्सर देखो जा रहा है कि शाम के समय आंधी तूफान जैसा माहौल बन जाते हैं गो। तो ऐसे में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैंगी उनको बचावे के लाने का तरीका अपने किसान साथी अपना सकत हैंगे।
0: देखिए इसके लिए तो अब यकायक तो रोकना असंभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं
1: जी
0: और इसके लिए तो हमको बाढ़ विधि ही सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो
1: जी
0: पश्चिमी और उत्तर दिशा में हमारे किसान भाई बाड़ लगाएं और बाढ़ से जो गर्म हवाएं आती हैं उनसे रुकावट होती है, और कद्दू वर्गीय फसलों में जो पछुआ हवाएं जो इस समय आजकल चल रही हैं और गर्मी भी उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से, यहाँ से ही गर्म हवाएं आती हैं, इनसे रोकने के लिए हम लोग बाड़ विधि का प्रयोग करें, और उस बाड़ विधि में या तो बायो बाड़ विधि लगा दें जिसमें लंबे लंबे पेड़ पौधे पहले लगाए जाते रहे थे,
1: जी
0: या इतना जल्दी नहीं है

0: से भी उस बाढ़ उसकी हवा की गति को हम लोग कम करें, जैसे अपना खेती किसानी का जो कूड़ा करकट निकलता है उसको एक एक डेढ़ डेढ़ फीट ऊंचा तक कर दें, या जो है उसमें मेड़ बना दें थोड़ा ऊंची।
1: जी
0: और इसके साथ अगर नहीं है तो पानी चैनल लगा, चैनल खुदवा के, खाई खुदवा के उसमें पानी भर दें। तो
1: जी
0: ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ये प्लानिंग करने से पहले, अब तो किसानों ने लगा दिया कद्दू,
1: जी
0: कद्दूवर की फसल आ रही है, तो उससे लगाने से पहले ही हमको ये प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है कि बढ़ती हुई गर्मी से बचाव हम कैसे करें। तो हमारे किसान भाइयों से है कि जिस दशा से गर्म हवाएं आ रही हैं वहां चैनल लगा दें, चैनल में पानी भर दें तो उससे रुकावट हो जाएगी। और हवा को रोकने के लिए विंड ब्रेक का कोई भी संसाधनों से उसका रुकावट करें तो हवा की गति कम हो जाएगी, तो कद्दू की फसल बच जाएगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको। आप हमेशा तत्पर रहेंगे अपने बुंदेलखंड के किसानन के लाने, और जब भी हम आपको फ़ोन करें या आप प्रत्यक्ष रूप से आउट होंगे तो बिल्कुल हमारे किसानन के लाने एक उम्दा जानकारी दे के जाऊ थेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, हम कर वो जाऊ थेंगे सर।
0: चलिए, आपको पुनः सादर नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
0: सभी हमारे बुंदेलखंड रेडियो हुए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।

एक बार साथियों रो फिर से बहुत बहुत स्वागत कराते कार्यक्रम खेत खलियान में। और बड़ी नौनी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी ने दई हैगी। और जो जानकारी चूंकि हमारे एक श्रोता साथी हैं नंदिनी जी, उनने एक सवाल करो तो उन सवाल को जवाब के लाने हमने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी से बातचीत करी। और बातचीत कर रही थी हमारी वर्षा जी, तो जानकारी पाके शायद नंदिनी जी के मन में जो सवाल हते और चल रहे थे वे सवाल उनको शायद जवाब मिल गया होइए। हम कोशिश करत हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी जा खेत खलियान कार्यक्रम खो सुनत हैंगे और सुनके बहुत सारे किसान साथी तो हमें फ़ोन करके पूछ लेते हैंगे कि हमारे फसल में जा परेशानी है या आगे चल के कौन तरीके की फसल हमें करें चाहिए। तमाम प्रकार के सवाल जवाब हो जाते हैंगे और हम कोशिश कराते हैंगे कि उन सवालों के जो आपके मन में चलते हैं उनके जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको उपलब्ध हो जाए, तो हम पूरी कोशिश कराते हैंगे। तो आपको क्या करना है कि आप हमारे नंबर 9219207749 पर फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं उनको कहूँ कहूँ तो डर लगा था कि हम रेडियो पर कॉल काय करेंगे और कैसे बातचीत करेंगे, तो चूंकि आपको बताना चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और जो समुदाय के लाने बनाओगा है वो समुदाय की समस्याएं, समुदाय की जानकारी, तमाम प्रकार की बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से करते हैंगे। तो आप ही को जो मंच है वो तो जाकर उपयोग करें। हम अब कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको जानकारी YouTube के माध्यम

0: माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। कैसे बहुत सारे हमारे किसान साथी, युवा किसान साथी जो रहेंगे, वे यूट्यूब पर जानकारी को सुनना चाहेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैंगे, हम प्रयास कर रहे हैंगे कि यह जानकारी रेडियो के संगे संगे अपने जो माध्यम इंटरनेट को माध्यम है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचावे की हम कोशिश करें। छोटे छोटे टुकड़न में जरूर करेंगे, छोटा सा प्रयास करें हम, जो बिल्कुल वादा नहीं कर रहे कि आपको जाके हम शुरुआत जल्दी कर देंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम जरूर जाके लाने प्रयास करेंगे। हम मैनेजमेंट जो हमारी कमेटी है उनसे बातचीत करके कोशिश करें कि ये कार्यक्रम को हम लोग लाइव या फिर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम को आप तक पहुँचाएँ। तो हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ ही गए होंगे। अब एक बात आता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी, हमारे वर्षा जी फेसबुक पे जो मौसम की जानकारी पहुंचाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाते हैं आप लोगों तक, तो मौसम की जानकारी ज़रूरी है। कैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैंगे जिनको जानकारी बहुत अच्छी लगत हैगी, उनके लाना मौसम की जानकारी है। और एक बार फिर से पुनः आपसे निवेदन करते हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़न चाहते हैंगे, तो 9219207049 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चूंकि इंटरनेट के माध्यम से हमारे और कहीं भी हमारे श्रोता साथी इस ऐप के माध्यम से, रेडियो बुंदेलखंड के ऐप के माध्यम से कार्यक्रम को सुन सकते हैंगे, हमें खुशी होती है जब सोमवार को और बुधवार को हमारे फरमाइशी कार्यक्रम चलत हैंगे और इतने दूर दूर से हमें कॉल आते हैंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र से हमारे किसान साथी जुड़त हैंगे, बड़ा अच्छा लगत है वो। तो हम प्रयास करें ये कार्यक्रम को और सुगम और सरल बनाने की कोशिश करें, खासतौर पर यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो पहले मौसम की जानकारी सुनो, जाके बाद अपन बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे पहले अपन संगे संगे गीत संगीत भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो गीत संगीत सुनते हैं, इसके बाद मौसम की जानकारी अपन सुनते हैं।
1: जीवन

भैया जो संदेश सुन लो भैया जो संदेश खुशहाल बनो रे अपनो देश खुशहाल बनो रे अप...

माला ओ माला माल कर देती जा जैविक खेती, माला माल कर देती जा जैविक खेती।

किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई भी बारे हमारे सब किसान साथियों को एक बार फिर से बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और श्रोता भैया हम लेके हाजिर हो गए हैं आप सबके लाने मौसम आधारित जानकारी को। तो जब मौसम आधारित जानकारी जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जो जानकारी कौन कौन से क्षेत्रन के लाने हैगी भी हम आपको बताए दे रहे हैंगे। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जिमें टीकमगढ़ छतरपुर दतिया और निवाड़ी जिला शामिल हैगो। साथियों आगामी 5 दिनन को मौसम को पूर्वानुमान ई प्रकार से हैगो। मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त भई जो मौसम की पूर्वानुमान अनुसार जानकारी बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के लाने हैगी। और इमें बताओ गो हैगो कि शाम के समय गरज चमक के संगे ओलावृष्टि आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना हैगी। आमतौर पर शुष्क मौसम रह सकत हैगो। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात को न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना हैगी। अभी बारे दिनन में ओलावृष्टि और गरज चमक के संगे वर्षा तथा तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैगी। सोजी में खड़ी फसल को गंभीर नुकसान भी हो सकत है। वो किसान साथियों को सलाह दी जा रही हैगी कि वे पकी भई जो फल हैं सब्जियां हैंगी उनकी कटाई को कार्य शीघ्र से कर लेवे। साथ ही में कमजोर फसलन को सहारो भी दे देवे। अब बात करते हैंगे श्रोताओं मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श की। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप देखो जा रहा है। अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण करवे तथा पाए जावे पे बचाव हेतु इमीडाकोप्रिट दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेवे। जिन किसान भैया ने खाली खेतन की जुताई नहीं करी हैगी वे विगत सप्ताह में भई बारिश से प्राप्त नमी को लाभ लेत भय जुताई को काम कर लेवे। अब बात करत हैंगे फल फूल और सब्जियों के बारे में। किसान भैया हरो टमाटर मिर्च तथा बैगन की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग को प्रकोप देखो जा रहा है। इसे बचाव हेतु किसान साथी कोनालफास 25 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर लेवे तथा अभी बारे 7 दिनन तक सब्जी को बिल्कुल ना टूरवे। श्रोता साथियों ओलावृष्टि गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलबे की संभावना को देखत भय किसान भाई पान के लगे भय बरीचा की मरम्मत को कार्य कर लेवे। भिंडी की फसल में लाल कीड़ा को प्रकोप हो सकत है। अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण करवे और अगर कीड़ा पाओ जा रहा है वो तो उसके बचाव हेतु ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव कर लेवे। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि कद्दू लौकी टिंडा करेला तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़वे से दिखाई दे सकत है। वो अतः इसे बचबे के लाने अपने किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आसमान साफ हो भी पे छिड़काव कर लेवे। किसान भाई नए बाग लगावे हेतु स्थान को चुनाव करवे साथ ही में खुदाई को कार्य भी शुरू कर देवे। नींबू वर्गीय पुराने पौधा के तने पे चूना में प्लाईटॉक्स मिला के लीप कर लेवे ताकि धूप से तना की क्षति ना होवे। अब बात करते हैं साथियों अपने पशुओं की पशु बकरियां और मुर्गियों की। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोटू व जहरी बुखार के टीका जरूर लगवा लेवे ताकि बारिश के मौसम के आवे तक इनमें अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास हो पावे। आवे बारे दिनन में ओलावृष्टि गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान खो देखत भय कच्चे छत बारे पशुशालायन के गिरवे को डर बनो रहू थे। वो सो इसे बचवे के लाने कच्चे पशुशालायन की मरम्मत को कार्य भी जल्दी से जल्दी कर लेवे ताकि कच्चे छत वाले पशुशाला में पशु सुरक्षित रह पावे। तो साथियों रोज जानकारी हम आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जानकारी आपको रेडियो बुंदेलखंड

बताई जा रही हैगी। आज की जो जानकारी इतनी कि अगली जानकारी हम आप तक फिर से लेके आए हैं। आप ऐसे सुनत रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। अभी अपन ने जब मौसम आधारित जानकारी को सुनो और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों तक जो जानकारी पहुंच रही हुई है, कैसे अब जो मौसम परिवर्तन हो रहा हो, ख़ासतौर पर गर्मियों में इस तरीके का मौसम परिवर्तन, कहीं कहीं तो जब मौसम इतनो करवट ले जाता है कि कहीं कहीं पानी बूंदाबांदी हो जाता है, कदम तो ओले पड़ जाते हैं, तो मौसम करवट जब लेते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं खेती में भी आते हैं। तो हमें ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उनको बचावे के लाने हमें अथक प्रयास करने हैं। कैसे बच सके तो आप सभी श्रोता साथी भली भांति जाको जानत भी हैंगे, कैसे अपनों पर्यावरण को अपन लोग बचा सकते हैं। ख़ासतौर पर हमें कोशिश करने के हमें जैविक पद्धति की ओर जावो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे आने वाले समय में हम जैविक पद्धति को अपनाने की कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। हमारे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में जैविक पद्धति से अपना खेती को करने लगे हैंगे और आधुनिक खेती करवो, प्राकृतिक खेती करवो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज वाला विषय भी है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर हमारे किसान साथी करते हैंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा भी होता है। अगर जमुनिया की बात करें और हमारे कुलुआ में भी कुछ किसान महिलाएं हैं जिन्होंने जैविक खेती करवो स्टार्ट करो है, वो ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैंगे कि हमारे किसान साथी अब बदलते समय में अपनी खेती भी बदल रहेंगे। तो हमें जब बदलाव के आगे चलने हैं, वो बदलने हैं अपनी खेती की, जब पुरानी पद्धतियाँ हो, नई चीज़ें को नई तकनीकी से अपन को खेती करने हैं, तो समय समय पर हम हर बार अपने किसान साथी के लाने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेके आते हैंगे। तो हमें आशा है कि जानकारी पा के हमारे किसान साथी ज़रूर अपने खेती में ज़रूर बदलाव करें। तो अब वक्त हो चुका है जो कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जावे को, तो कैसो लगो जो कार्यक्रम हमें ज़रूर बताओ। हमारे जा नंबर पे नंबर है 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आप चिट्ठी पत्रिका भेजन चाहते हैं को पत्रिका को पतो है मो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम और छतला के पास ओरछा। तो अब हमें देव जावे की इजाज़त, आपकी हमारी फिर हुई है अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों कार्यक्रम को जैसो नाम है तैसो काम भी है। इस कार्यक्रम में अपन एक विधा सुनते हैं और वो विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन इस कार्यक्रम में विधा तमूरा, और तमूरा भजनन को अपन आनंद ले हैं। और इस तमूरा भजनन को गा रहे हैं कोमल दास जी। सो कोमल दास जी के स्वर में अपन सुने आज ही कार्यक्रम में जे तमूरा भजनन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में ई तमूरा भजन को।

बिल्कुल दोस्तों, सुमरों बारंबार जी, देखो कितना बढ़िया जो तमुरा भजन अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लाओ है। और ये भजन को गा रहे थे कोमल दास जी और उनके संगी साथी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में कोमल दास जी के स्वर में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से तमुरा भजन को, लेते हैं तमुरा भजन को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में।

बिल्कुल, चलने परे जरूर हरी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे कोमल दास जी। अब कोमल दास जी के स्वर में अपन आ गए एक और गीत सुने और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली।

के बाबा बारे के बैरागी। देखो कितना बढ़िया, जो अपन ने तमुरा गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है। आओ ये गीत के संगे संगे अपन एक और आगे गीत सुनते हैं, गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में सुनत रहो जो अपनो प्यारो सो कार्यक्रम विधा बुंदेली, अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में आगे एक और तमुरा गीत को।

बिल्कुल, निर्गुण खेत उजारे जतन बिन निर्गुण खेत उजारे। देखो कितना बढ़िया जो तमुरा गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कोमल दास जी। अब दोस्तों कोमल दास जी के ये गीत के संगे संगे हम आप और इनको बता दें कि आज के अपने ही कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतना ही समापन होबे को समय हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दीन भैया को तो दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, और चलत चलत अपन लिख लो हमारा फ़ोन नंबर और हमारे पते को, जिसे के आप और हमारे फ़ोन नंबर पे हमें कार्यक्रम की राय सुझाव दे सकें, पहुंचा सकें हम तक फ़ोन के माध्यम से। और पते पे अगर आप चिट्ठी पत्री लिखवो चाहें तो हमें चिट्ठी पत्री भी लिख सकत। सो हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। यही के संगे हमारा फ़ोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम के राय सुझाव भी दे सकत के माता दिन भैया हमें आपको कार्यक्रम जो कैसा लगो। सो अब एक के संगे संगे देखो अपनो समय भी हो रहा है, काहे के घड़ी इंतजार अपनो निकट अपन को समय को इंतजार करने आउत। सो घड़ी अपन से कह रही के माता दिन भैया अब आपको ई कार्यक्रम से जाबे को समय भी हो चलो है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।